0: से सुनते हैं।
1: द कॉमनवेल्थ गेम्स
2: 2026 कॉमनवेल्थ गेम्स अभी स्कॉटलैंड के ग्लासगो में

0: चल रही हैं। ग्लासगो में भले ही ठंड हो, लेकिन हमारे एथलीट्स जोश, जुनून और जज्बे के साथ भारत का नाम रोशन करने के निरंतर प्रयास में लगे हुए हैं। अभी तक के प्रमुख स्टार्स भारत की तरफ से रहे हैं मीराबाई चानू और शर्मिला धनकर। मीराबाई चानू ने महिलाओं के 48 किलोग्राम वेट लिफ्टिंग इवेंट में भारत के लिए पहला गोल्ड मेडल जीता। वहीं शर्मिला धनकर ने महिलाओं के F57 शॉटपुट में भारत के लिए पैरा एथलेटिक्स का पहला ऐतिहासिक गोल्ड मेडल जीता।
1: स्पर्धाओं के छठे दिन क्या फिर भारत के लिए कोई जादू की छड़ी चमकने वाली थी? और कौन होने वाले थे वो एथलीट जो चमत्कारी प्रदर्शन करके दिखाएं? भारोत्तोलन में अब तक जो भी भारतीय लिफ्टिंग हॉल में आया था उसने पदक का भार तो उठा ही लिया था। छठे दिन ये सिलसिला टूट गया। भारतीय मुक्केबाजों ने अभी तक शानदार प्रदर्शन किया है और अब पदक बस उनकी जद में आने ही वाले हैं। क्वार्टर फाइनल चक्र था, एक जीत यानी पदक पक्का। सिलसिले का आरंभ पहली बाउट से ही प्रीति ने कर दिखाया। एथलेटिक्स में चार भारतीय थे, 400 मीटर पुरुष में दो, ऊंची कूद में पूजा और 10,000 मीटर में गुलवीर। स्विमिंग में दो बड़े सितारे पूल में उतरे, साजन प्रकाश और श्रीहरि नटराज। लेकिन यहाँ पर मुकाबला इतना कड़ा है कि हीट्स को पार करने के बाद फाइनल में जगह बना लेना भी एक उपलब्धि बन जाता है। तो पैरा खिलाड़ी भी अपने संकल्पों को उड़ान देने में लगे हुए हैं। सारी चर्चा करते हैं अपने इस विशेष कार्यक्रम में राष्ट्रमंडल खेल ग्लासगो 2026 के छठे दिन का लेखा जोखा। एथलेटिक्स में कल भी एक शानदार प्रदर्शन आया और इस बार ट्रैक से लॉन्ग डिस्टेंस रनर गुलवीर सिंह ने इस साल चल रहे अपने अच्छे फॉर्म को बरकरार रखा और रजत पदक हासिल किया। 10,000 मीटर की स्पर्धा में गुलवीर ने इस साल अपना सबसे अच्छा जो समय निकाला था वो था 27:24.28। इसके हिसाब से मुकाबला खासा कड़ा दिख रहा था क्योंकि फाइनल में कीनिया के ही तीन धुरंधर 27 मिनट से कम समय निकाल चुके थे। तेज बारिश के बीच ये रेस आरंभ हुई। गुलवीर धुन के पक्के निकले, बारिश की परवाह किए बिना अपना रिदम बनाए रखा और अंतिम लैप में तो शानदार प्रदर्शन किया और दूसरा स्थान प्राप्त किया 27:49.78 के साथ। स्वर्ण पदक पाया ऑस्ट्रेलिया के वाई रॉबिन्सन ने 27:48.93 के साथ और कांस्य पदक मिला आइल ऑफ मैन के डेविड मुलारके को। गुलवीर ने रवानगी से पहले ट्रेनिंग और उम्मीदों को लेकर कहा था,
2: अच्छी बेहतर करेंगे अपना जितना, जिस हिसाब से ट्रेनिंग चल रही है जिस हिसाब से प्लान है कोच का अच्छा होगा।
1: बस ये लास्ट वाला। पुरुषों के 400 मीटर में दो भारतीय थे, उम्मीदें विशाल टीके से ज्यादा थीं और उन्होंने क्वालिफिकेशन राउंड में हीट 6 में 46.49 के साथ दूसरा स्थान पाया और क्वालिफाई कर लिया। हालांकि कुल मिलाकर 16 क्वालिफायर्स में वे 14वें स्थान पर रहे। यानी अगर पदक की उम्मीद जिंदा रखनी है तो आगे उन्हें अपना सब कुछ झोंक देना होगा। इसके पहले हीट 3 में राजेश रमेश 47.73 के साथ तीसरे स्थान पर आए और ओवरऑल 25वें स्थान पर रहे, क्वालिफाई नहीं कर सके। महिलाओं की ऊंची कूद में पूजा सिंह से बहुत उम्मीदें थी कि वो पुरुषों की स्पर्धा के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगी। उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन रहा है 1.93 मीटर की ऊंचाई लांघना। पूजा ने यहां पर शुरुआत की 1.72 मीटर से, उसके बाद 1.77 मीटर की ऊंचाई पार की। इसके बाद बहुत तेज बारिश आई और करीब 1.5 घंटे के लिए स्पर्धा को रोक दिया गया और लगता है पूजा की रिदम भी शायद यहीं पर टूट गई। जब स्पर्धा आरंभ हुई 1.82 मीटर की ऊंचाई फांदने की कोशिश पूजा ने की लगातार, लेकिन वो इसको पार नहीं कर पाई। पूजा की कूद की ऊंचाई बस यहीं थम गई और साथ ही पदक की उम्मीद भी जाती रही।
0: A ray of sunshine for all the fans of weightlifting out there, and definitely a moment of pride for all Indians to smile as Harjinder Kaur won the silver medal in the women's 69 kilogram category finals, thereby taking the total medal tally to 7 in weightlifting. Harjinder won the silver medal with a total of 227 kilograms, which included 101 kilogram in snatch and 126 kilogram in clean and jerk. She put in a dominant display in the snatch category of the women's 69 kilogram final. She lifted 96 kilogram, 99 kilogram and 101 kilogram in her 3 attempts in snatch, and thereby her best effort in snatch was recorded at 101 kilogram. Thereby her total

0: went on to become 227 kilogram, which bought India the 7th medal in weightlifting, and Harjinder contributed by bringing in the silver in the women's 69 kilogram category.
1: 1 year se sir mehnat kar rahe hain, iske liye result hai uska. Family ne bahut support kiya, down nahi hone diya kabhi, har time mera saath diya hai.
0: Well, heartbreak for all the lovers of weightlifting. India's Nirupama Devi Serum had raced her opening attempt in the clean and jerk to 123 kg in the women's 63 kg final after initially registering 115 kg. But she failed to complete all her three attempts in clean and jerk at 123 kg in the women's 63 kg final. With no successful lift recorded in the clean and jerk round, Nirupama was out of medal contention and registered a did not finish in the women's 63 kilogram final.
2: कल भारत के पांच मुक्केबाज रिंग में उतरे अपने ग्लव्स का दम आजमाने के लिए. पांचों बड़ी मेहनत कर राउंड ऑफ एट में पहुंचे थे और अब पदक की खुशबू उन्हें बस आने ही लगी थी. एक जीत और पदक पक्का हो जाएगा, लेकिन यही लक्ष्य नहीं है, मन में तो गोल्ड मेडल बसता है. कल शुरुआत की हरियाणा की उर्वर जमीन से निकली नई पौध की प्रीति पवार ने. बचपन में लड़कों के साथ मुक्केबाजी की प्रैक्टिस और पैरी करते करते 22 साल की ये लड़की विश्व कप में स्वर्ण पदक जीत लाई है. कल उसके मुकाबले थी रेड कॉर्नर में नॉर्दर्न आयरलैंड की निकोल क्लाइड. प्रीति की चपलता, मौके चुरा कर धड़ाधड़ मुक्कों की झड़ी लगा देना, इसका निकोल के पास कोई जवाब ही नहीं था. तीनों राउंड सर्वाइव कर लेना ही निकोल की सबसे बड़ी उपलब्धि.
3: We have a unanimous decision. The winner in the blue corner from India, Preeti Preeti.
4: It's really nice to have a strong team because it does matter from which country you belong. So, real nice.
2: अब सेमीफाइनल में प्रीति का मुकाबला जिम्बाब्वे की कैथरीन वापे से होगा 31 जुलाई को. बस दो दिन बाद अपना 20वां जन्मदिन मनाने जा रही प्रिया घंघास भी बड़ा पीछे क्यों रहती. स्कॉटलैंड की निया मिशेल को हराकर उन्होंने खुद के लिए ही तोहफा पक्का कर लिया. हालांकि ये बाउट जीतने में उनको बहुत पसीना बहाना पड़ा. अब तय होना था तीसरे राउंड में कि किसको मिलनी है जीत, और ये पूरी तरह प्रिया का रहा. एक के बाद एक उन्होंने जब तीन स्ट्रेट पंच मिशेल के चेहरे पर जड़ दिए, तभी सबको लग गया कि अब तो ये प्रिया पंघास ही जाने वाली हैं अगले राउंड में. स्प्लिट डिसीजन आया और निर्णायकों ने ये बाउट प्रिया के नाम कर दी.
3: The winner in the red corner.
2: अब पिछले हंगचाओ एशियन गेम्स की स्वर्ण पदक विजेता परवीन हुडा पर जिम्मेदारी थी मुक्केबाजों के इस शानदार प्रदर्शन को आगे बढ़ाने की. सामने रेड कॉर्नर में थी इंग्लैंड की शाचा हिकी. सारा स्थानीय समर्थन हिकी के साथ ही था. कांटे की लड़ाई हुई, लंबी छहरी परवीन ने कोशिश तो बहुत की, मुकाबले में अपने क्षण भी उन्होंने कुछ कमाए, लेकिन अंततः रेफरीज का निर्णय 2-3 से उनके विरुद्ध गया और साथ ही पदक की उम्मीद भी चकनाचूर हो गई. नाम है जदुमणि सिंह. आज वो भारतीय सितारा है, उसके मुक्कों से विपक्षी थर्रा रहे हैं. कल क्वार्टर फाइनल में जाम्बिया के मांगो मौले उनके खिलाफ थे. पंचेस, अपरकट्स, जैब्स और साथ में पूरी होशियारी से गार्ड बनाए रखा जदुमणि ने, और इसका परिणाम ये हुआ एक और सर्वसम्मति से मिली हुई 5-0 की विजय. छठे दिन की अंतिम बाउट में भी एक भारतीय था, 90 किलोग्राम भार वर्ग में कपिल पोखरिया. रेड कॉर्नर में उनके सामने थे स्थानीय बॉक्सर रॉबर्ट मैकलाउटी. कपिल ने कोशिशें तो बहुत की, लेकिन रॉबर्ट उनसे हर क्षेत्र में बेहतर साबित हुए. 5 में से 3 मुक्केबाजों ने पदक पक्के कर लिए और कहानी तो अभी बाकी है.
0: India's para swimmers Ravi Veera Venkata Bhavani Karthik Buddigana and Ali Imam led India's campaign into the finals, recording a historic top 8 finish but narrowly missing out on podium placements at the Glasgow 2026 Commonwealth Games. In men's 100 meter freestyle S13 final, in a thrilling race, Buddigana came agonizingly close to a medal, finishing joint 4th with a time of 57.57 seconds, less than a second away from the bronze medal winner. Ali Imam completed the double final appearance for India, finishing 7th with a time of 1 minute 03.73 seconds. We may not have had a podium finish at the ongoing Commonwealth Games 2026 for our para swimmers, but this achievement in itself calls for nothing less than a celebration. What looked like a promising start from our swimmer Sri Hari Nataraj today did not quite make it to a promising finish. In the semi-finals, Nataraj finished 7th In the semi-final, he took an 11th overall. He clocked 25.29 seconds, an improvement from his heat timing of 25.52 seconds. But it was not enough to make the 8-man final. Veteran swimmer Sajan Prakash was eliminated in the preliminary rounds. Placed 8th in his group and 28th overall in the men's 50-meter butterfly with a time of 24.94 seconds, he failed to advance to the next round. On the sixth day of the Glasgow 2026 Commonwealth Games, the Indian men's pair team of Dinesh Kumar and Navneet Singh defeated the Cook Islands in their men's pair sectional play match in bowls. This critical group stage win kept India's knockout qualification hopes alive as part of the round-robin sectional format. In women's singles sectional play in bowls, Nayanmoni Saikia made an impressive start in a women's singles lawn bowls campaign at the Glasgow 2026 Commonwealth Games, securing a crucial opening sectional play victory against Wales' Amy Williams.
2: एथलेटिक्स के हिसाब से आज का दिन भारत के लिए बहुत ही गर्मा गर्म होने वाला है। तेजिंदर पाल सिंह दूर शॉर्ट पट में उतरेंगे और उनके साथ होंगे समरदीप सिंह गिल, जिनको कहीं से आप हल्का नहीं आंक सकते। 200 मीटर की हीट्स में अनिमेश कुजूर उतरेंगे, 400 मीटर की बाधा दौड़ में यशाश पलाक्ष और संतोष कुमार टी होंगे। मुरली शिशंकर पर सबकी निगाहें रहेंगी, हमारे देश के सबसे उमदा लॉन्ग जंपर, आज उन्हें पदक के लिए छलांग मारनी है। वहीं लोकेश सत्यनाथन भी साथ में है। मनप्रीत कौर महिला शॉटपट में चुनौती पेश करेंगी और पारुल चौधरी 3000 मीटर स्टीपल चेज में उतरेंगी।
0: In weightlifting today, we shall be having the women's 77 kilogram category event, in which the Indian representation is going to be done by the 19-year-old Indian Sanjana. She's a weightlifter who competes in the women's 77 kilo category. In lawn ball, we'll have the men's pairs category, in which Navneet Singh and Dinesh Kumar shall be representing India in the sectional play round. In lawn balls, we'll also have the women's singles, in which Nayanmoni Saikia shall also be representing India in the sectional play round.
2: बॉक्सिंग में फिर सबकी निगाहें रहेंगी, क्योंकि जो जो मुक्केबाज बाउट जीतेगा वो पदक पक्का कर लेगा। 6 मुक्केबाज रिंग में उतरेंगे, 51 किलोग्राम में साक्षी, 70 किलोग्राम में अरुंधति चौधरी, 60 किलोग्राम में सचिन सिवाच, 80 किलोग्राम में अंकुश यादव और 90 से ज्यादा भार वर्ग में नरेंद्र बेरवाल, और इसके साथ 57 किलोग्राम में जो आखिरी बाउट होगी कल वो होगी जैस्मिन लंबोरिया की।
0: In swimming, first we shall be witnessing the men's 200 meter freestyle category event, in which all the eyes are gonna be today on Sajan Prakash, Anish Sunil Kumar Gowda. This shall be the heat 4 and heat 5 round stages, in which all the eyes will be on these two swimmers today from India. In para swimming also, we shall be having the men's S7 50 meter freestyle event, in which Chaitanya Vishwas Kulkarni and Suyash Narayan Jadhav shall be representing India. Srihari Nataraj will be representing India in the men's 100 meter backstroke finals today, and we also have Sajan Prakash and Anish Sunil Kumar Gowda representing India in the men's 200 meter freestyle finals. Men's 1500 meter freestyle event, in which Aryan Nehra will be representing India in the fastest heat round. At the end of the day, the medal tally had Australia leading the 2026 Commonwealth Games medal table with 67 total medals, followed by Canada, which has a total of 30 medals, and England on the third spot, which has a total of 40 medals. India, on the other hand, stands at number 8 position with 11 medals in total, which includes 2 gold, 6 silver and 3 bronze. With that, I would now like to thank our producer Shahnawaz Khan, editor Vandana Bharadwaj, my co-commentator and a dear friend Anupam Pathak, and myself Sakshi Mandwal. It's the entire team of All India Radio now saying goodbye to all our listeners.
5: Glasgow. The Commonwealth Games.
6: Gaane Baju, Onir Radio. Shuncho, 107 FM Rainbow. Shat Shure Sharadin. Shat Shure Sharadin.
7: শুনছেন নমস্কার কলকাতা,
8: নমস্কার কলকাতা
7: 107 FM রেইনবোতে। নমস্কার কলকাতা,
8: নমস্কার কলকাতা।

जी हाँ दोस्तों, स्वागत है, अभिनंदन है, इस्तकबाल करती है आपकी दोस्त सविता जी एफएम गो, एफएम रेनबो नॉन स्टॉप गपशप पर। छोड़ने मैं नहीं जाता उसे दरवाजे तक, लौट आता हूँ कि अब कौन उसे जाता देखे। जी हाँ, सुबह सुबह जाने की जिद तो है आपके अंदर, क्योंकि जाना है काम पर, काम पर जाना है, स्कूल कॉलेजेस जाना है, ट्यूशंस जाना है, या फिर सबके अपने अपने जो जो काम हैं उन कामों को भी सुलझाना है, समाप्त करना है। लेकिन जब आप घर से बाहर विदा होते हैं तो आपके प्रिय दरवाजे तक आपको छोड़ने आते हैं, और आप भी जाते जाते पीछे मुड़कर देखते हैं तो आपकी उसी प्यार भरी नज़र को हम करते हैं सलाम।

0: शीला नहीं, मैं हूँ सविता, और सविता ही रहेगी पूरे एक घंटे आपके साथ नॉनस्टॉप गपशप पर। तो दोस्तों, हम करने वाले हैं ढेर सारी बातें, लेकिन उससे पहले कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में किसान के बेटे सर्वेश ने रचा है इतिहास, हम देते हैं उनको बधाइयाँ। जी हाँ, किस बात की बधाइयाँ ये भी आपको बता दें, क्योंकि भारत के राष्ट्रीय रिकॉर्डधारी सर्वेश कुमार ने कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में इतिहास रच दिया है। 31 वर्षीय एथलीट ने पुरुष हाई जंप स्पर्धा में 2.25 मीटर की छलांग लगाकर रजत पदक हासिल कर लिया है। दोस्तों, यह कॉमनवेल्थ गेम्स के इतिहास में इस स्पर्धा में रजत पदक जीतने वाले वो पहले भारतीय बन चुके हैं। इससे पहले तेजस्विन शंकर ने 2022 बर्किंगहम खेलों में कांस्य पदक जीतकर इतिहास रचा था। तो है ना एक अच्छी खुशखबरी। दोस्तों, इस खुशखबरी के साथ हम उनको ढेर सारी बधाइयाँ देते हैं, क्योंकि हमें उन पर नाज है, गर्व है। उन्होंने भारत के तिरंगे को ऊंचा किया है, उसको किया है सलाम। और बढ़ते हैं अब आगे कार्यक्रम में। आगे हम का आपके लिए क्या लेकर आए हैं? जी हाँ, आगे कार्यक्रम में हम आज के दिन का इतिहास आपके लिए लेकर आए हैं। तो पहले इतिहास साझा करते हैं।
1: आज के दिन

दोस्तों, हर दिन का इतिहास कुछ ना कुछ कहता है और उसके साथ हम साझा करने की कोशिश करते हैं उस इतिहास को जिसे हमने बचपन में अपनी दादी नानी से सुना है। स्कूल में कदम रखते ही ऐतिहासिक कहानियों का आकर्षण हमें खींचा है और जब सुने हुए किस्से आंखों से देखते हैं, उंगलियों से छूने का एहसास पाते हैं तो दिल और दिमाग रोमांच से भर उठता है। ऐसे इतिहास को आइए जी लेते हैं। दोस्तों, 29 जुलाई का दिन ऐतिहासिक घटनाओं से भरा हुआ है। 1567 में इसी दिन जेम्स सिक्स को स्टर्लिंग में स्कॉट्स के राजा के रूप में ताज पहनाया गया था, जिससे उनके शासनकाल की शुरुआत हुई और आगे चलकर वे इंग्लैंड

0: एंग्लो स्पेनिश युद्ध के दौरान हुए ग्रेबलिंस के युद्ध में लॉर्ड चार्ल्स हावर्ड और सर फ्रांसिस ड्रेक के नेतृत्व में अंग्रेजी नौसेना ने स्पेनिश आर्मडा को हराया, जो नौसैनिक युद्ध में एक महत्वपूर्ण मोड़ था। हाल के इतिहास में 29 जुलाई 2005 को बौने ग्रह एरिस की खोज हुई थी, जिसने प्लूटो को बौने ग्रह के रूप में पुनः वर्गीकृत करने के योगदान इसमें दिया था और हमारे सौरमंडल को समझने की गहरी समझ उसने विकसित की थी। तो ये थे आज के ऐतिहासिक तथ्य।
1: आज के दिन

एक बार फिर से स्वागत है, अभिनंदन है आप लोगों का दोस्तों 107 FM रेनबो पर। दोस्तों आज अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस भी मनाया जा रहा है। बाघों के संरक्षण और उनके संवर्धन के लिए जागरूकता बढ़ाने के लिए यह दिन समर्पित एक दिन है। दोस्तों यूँ तो हमें हर दिन ही उनके प्रति समर्पित होना चाहिए, क्योंकि बाघों की जो लुप्त होती संख्या है वो हमारे लिए एक चेतावनी है। पर्यावरणीय संरक्षण की सुरक्षा की जिम्मेदारी भी हम सब पर है। यदि पर्यावरण सुरक्षित रहेगा तो हमारे लुप्त होते जीव जंतु पशु सभी सुरक्षित रहेंगे, हम उनके लिए एक हेल्दी एनवायरनमेंट क्रिएट कर पाएंगे। दोस्तों राष्ट्रीय चिकन बांग्लादेश दिवस भी मनाया जाता है आज के दिन। और इसके अलावा आज के दिन एक और ख़ास दिवस मनाया जाता है, वो है राष्ट्रीय लज़ानिया दिवस। इतावली व्यंजनों का एक मुख्य व्यंजन माने जाने वाले इस स्वादिष्ट और पौष्टिक पकवान की सराहना करने का दिन है। दोस्तों इसके अलावा एक दिन राष्ट्रीय लिपस्टिक दिवस। संयुक्त राज्य अमेरिका में सौंदर्य उत्पादों में से एक सबसे प्रतिष्ठित उत्पाद का जश्न मनाने का दिन भी है। तो चाहिए आज आप चाहें तो लिपस्टिक खरीद सकते हैं या फिर लगाकर श्रृंगार की सुंदर का भी आप बढ़ा सकते हैं। आज गुरु पूर्णिमा भी है। दोस्तों गुरु पूर्णिमा के अवसर पर वाराणसी में संत रविदास की 650वीं जयंती वर्ष के उपलक्ष्य में एक विशेष राष्ट्रव्यापी अभियान की शुरुआत होने जा रही है। इस तरह से आज का दिन खास दिन है जिसके बारे में हमने आपसे बात की, और इसी एक दिन के बारे में आज हम आपसे बात करने वाले हैं फ़ोन पर। तो फ़ोन पर आप हमसे बात ज़रूर करिएगा 2213131411 पर।

दोस्तों, हमारे राष्ट्र और सामाजिक जीवन में गुरु पूर्णिमा एक अत्यंत महत्वपूर्ण और पावन उत्सव है। व्यास महर्षि हमारे आदि गुरु हैं। उन्होंने मानव जीवन को गुणों पर आधारित करते हुए उन महान आदर्शों को एक व्यवस्थित रूप में समाज के सामने रखा है। भारतीय संस्कृति में गुरु को केवल एक व्यक्ति नहीं बल्कि एक शाश्वत बिंब और पोषक तत्व के रूप में देखा है। कबीरदास जी का दोहा भी है ना कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागे लागू।

0: उपाय बलिहारी गुरु आपने गोविंदियो बताए। यानी गुरु का स्थान भगवान से भी ऊंचा है क्योंकि उन्होंने ही भगवान तक पहुंचने का रास्ता दिखाया है, इसलिए भगवान ने गुरु को बड़ा बता दिया है। दोस्तों गुरु वह मार्गदर्शक है जो अज्ञान के अंधकार को मिटाकर जीवन में ज्ञान का प्रकाश फैलाते हैं। कबीरदास और हमारे शास्त्रों ने गुरु की महिमा का बखान खूब किया है। आज हम इन्हीं पर बात करने वाले हैं। आपके जीवन में वो कौन है गुरु जिसे आप मानते हैं एक ज्ञान का दीपक, वो स्रोत जिसने आपकी जिंदगी को मार्गदर्शन दिया। 2242-7912 पर आप मिल सकते हैं। हमारे साथ एक फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं तो हम उनको ले लेते हैं। हेलो हेलो,
1: मैं एयर में आ गया।
0: जी हाँ बिल्कुल, आप एयर पर हैं।
1: अच्छा, मैं अरूप बोल रहा हूँ।
0: अरूप जी आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में, बताइए।
1: अच्छा, बाघ के बारे में एक बात देना चाहता हूँ।
0: हाँ बताइए।
1: एक जो जो मैंने टूरिस्ट जाता है ना, वो जो मैंने जल का डब्बा उसमें फेंकता, लेकिन वो बाघ देख के उसका मैंने डर लगता है। ये मेरा पास जानकारी है, इसलिए हम टूरिस्ट को कहना चाहता हूँ जब तक तो माने पानी का डब्बा मत फैलिए।
0: अच्छा
1: मत फैलिए।
0: अच्छा, ये आपने अच्छी जानकारी दी।
1: हाँ,
0: और गुरु के बारे में आपके लाइफ में वो कौन है गुरु जिसे आप मानते हैं कि जिन्होंने आपके जीवन को बदला या एक शेप दिया?
1: मैं तो एक आदमी को गुरु मानता हूँ। तो मेरा तो 64 हो गया, उसका 70 हो गया, लेकिन वो तो काम फॉर्म मैंने कम करता है। वो मेरा मैंने मैंने हाथ धर के काम सिखाया, उसका हम गुरु बनता है।
0: बिल्कुल, आपने ये अच्छी बात कही कि किसी ने आपको हाथ पकड़ के काम करना सिखाया है तो वो आपके गुरु हैं, और ये सच बात है क्योंकि आज आप जो रोटी कमा पा रहे हैं वो उन्हीं के कारण है। बिल्कुल अरूप जी, आप हमारे साथ जुड़े इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया।
1: अच्छा, एक शुक्रिया, एक अनुरोध है।
0: हाँ बोलिए।
1: संपत्ति सुबीर सेन का जन्मदिन हुआ, सुबीर सेन का बहुत हिंदी गाना है, एक तो बजा दीजिए सुबीर सेन का।
0: सुबीर सेन?
1: हाँ, मैंने मेरा ख्याल से 70-80 गाना गाया हूँ।
0: सुबीर सेन के गाए हुआ हिंदी का?
1: हाँ हिंदी।
0: अच्छा, मैं कोशिश करूंगी। ठीक है।
1: हाँ, कोशिश करूंगी। मैं तो पुराना गाना का भूखा है
0: लेकिन ये जो प्रोग्राम है ना वो नए गानों का है सुबह में जो 7 से 8 हम लोग लो आ गई जो सुहानी सुबह करते हैं वो आप रात सुबह में जरूर सुनिए, आपको अच्छा लगेगा। ठीक है। तो दोस्तों अरूप जी ने कहा कि बाघ जो होते हैं पानी के डिब्बों को से डरते हैं, तो ये एक अच्छी जानकारी थी। दूसरी, उनकी ज़िंदगी में किसी ने उन्हें हाथ पकड़ के चलना सिखाया। बिल्कुल, जो काम यदि कोई आपको सिखाता है तो वो आपको जीवन भर के लिए एक दक्षता एक कौशल सिखा देता है, ये एक सबसे बड़ी बात है और वो आपके लिए गुरु है। मेरे साथ आप और भी जुड़ सकते हैं और बात कर सकते हैं गुरु के बारे में। आइए सुनते हैं पहले एक गीत।

0: फिल्म जिस्म से आप सुन रहे थे के को, और हमारे साथ जुड़ चुके हैं एक कॉलर, तो देखें वो क्या कहते हैं। हेलो हेलो हेलो
1: हेलो,
0: हाँ आप कौन बोल रहे हैं?
1: मैं शौभिक शौकर बोल रहा हूँ दीदी, कस्बा।
0: शौभिक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में, बताइए कैसे हैं?
1: मैं अच्छा हूँ, आप?
0: मैं भी बढ़िया हूँ एकदम से।
1: थैंक यू। आप जो बोल रहा था दीदी गुरुदेव के बारे में,
0: जी
1: गुरु गुरु जो है, देखिए पहले तो होता है हम लोग का जो माँ बाबा तो होता ही है। हाँ, दूसरी माँ बाबा हम लोग को कोई ना कोई देखिए लेसन तो देता ही है, शिक्षा तो देता ही है लाइफ, कोई ना कोई। उसके बाद देखिए हमारा जो शिक्षा गुरु जो है ना, वो है हमारा का टीचर है, क्योंकि हम लोग का वो बहुत बड़ा लेसन देता था, क्योंकि हम लोग को बोला था जो आप लोग को जो टारगेट जो है वो एकदम एकदम लक्ष्य नहीं, हम लोग को बांग्ला में जो बोलता है ना, वो बोलता है जो लक्ष्य ठीक ठाक रखना चाहिए, क्योंकि हम लोग को जो टारगेट करता है हम लोग के करेंगे तो करेंगे ही। हम लोग को कभी कभी देखते हैं हम लोग सफल नहीं हुआ तो हम लोग टूट जाते हैं, एकदम मन मरा हो जाता है। ऐसे मेरे सर जो बोला था एकदम टूटना नहीं चाहिए, एकदम लक्ष्य एकदम स्थिर रखना चाहिए, कभी हार नहीं मानना चाहिए, आपकी जब जो भी फलाफल आए ना वो एक्सपेक्ट करना चाहिए। कभी कभी हार से भी कभी कभी हम लोग का कोई ना कोई शिक्षा हम लोग को मिलता है। हम लोग को जब भी कभी कभी जब हार मिलता है तो हम लोग टूट जाते हैं, किंतु कभी कभी हार से ही कभी कभी हम लोग को शिक्षा मिलता है। वही मुझको शिक्षा जो टीचर जो था दीदी, उसने हमको ये लेसन दिया था। और मेरे बाबा ने, मेरे जो पिताजी जो था, उसने वो बोला था कि टाइम को मूल्य दीजिए, वैल्यू दीजिए, टाइम एक कल में आपको वैल्यू देगा, क्योंकि टाइम का काज टाइम में करना चाहिए, फेंकना नहीं चाहिए। हम लोग का कभी कभी देखता है दीदी, हाँ टाइम तो है चलो बाद में करेंगे। मुझको जो पिताजी था वो बोला था जो टाइम को करना चाहिए।
0: बिल्कुल,
1: मेरे शिक्षा मिला था दीदी।
0: बिल्कुल शौभिक जी, आप हमारे साथ जुड़े इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया।
1: थैंक यू दीदी,
0: थैंक यू। तो शौभिक जी ने कहा कि उनके पिताजी ने कहा समय की वैल्यू समझो, बिल्कुल समय का सदुपयोग करना बहुत ज़रूरी होता है, और ये तो हमें सिखाते हैं हमारे गुरु। और उन्होंने बताया कि माता पिता, तो माँ ही हमारी सबसे पहली गुरु होती है। गुरु का एक जब हम मंत्रोच्चार करते हैं तो कहते हैं गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा गुरुर साक्षात परम ब्रह्म तस्मय श्री गुरु वे नमा। तो दोस्तों जहाँ यहाँ गुरु की सृष्टि की रचना से लेकर के विध्वंस तक सभी आयामों में हमारे गुरु हैं, वह व्यक्ति नहीं है बल्कि अनादि शक्ति रचेता पालक संहारक और सृष्टि के हर अंग के पोषक हैं। तो गुरु की महिमा तो इतनी बड़ी है।

0: दोस्तों जुड़ चुके हैं हमारे साथ एक और कॉलर, देखते हैं वो क्या कहते हैं अपने गुरु के बारे में। हेलो
1: हेलो
0: हेलो, आप कौन बोल रहे हैं?
1: नमस्कार
0: नमस्कार, आपका नाम बताइए।
1: पश्चिम से हाफिजुल मौला बात कर रहे हैं आपके साथ, भी कहते हैं गुरु।
0: मैं एकदम बढ़िया हूँ, आपकी आवाज़ सुन के और भी अच्छी हो गई। जी थोड़ा सा अपने फोन कॉल से थोड़ा सा रेडियो से थोड़ा सा दूर हो जाइए।
1: ठीक है, हम तो दूर है, रेडियो से बहुत दूर है।
0: अच्छा चलिए बताइए,
1: जो आज जो राष्ट्रीय जो तुम काम करने के जो बात कर रहे हैं।
0: हाँ,
1: मेरे पास तो मेरे शिक्षा गुरु बहुत अच्छा है।
0: अच्छा,
1: बाप तो बहुत अच्छा है
0: जी।
1: जी तो असल तुम जो काम जो तुम वो बहुत अच्छा लगता है।
0: वो अच्छा लगता है?
1: यस, एब्सोल्युटली राइट
0: जी, बढ़िया है। अच्छा लगे तो हमको तो आप खुशी देते हैं और हम आपको खुशी देते हैं, है ना?
1: हाँ।
0: आप लोग से बात करते हैं तो मेरा मन खुश हो जाता है।
1: ठीक है ठीक है दीदी, ठीक है ठीक है
0: ठीक है,
1: एब्सोल्युटली
0: बिल्कुल। तो खुश रहिए। तो दोस्तों हमारे साथ हमारे दोस्त जुड़े और वो बड़े ही एग्जाइटेड थे और उन्होंने बहुत छोटी सी बात की और उन्होंने कहा कि उनके जो माता पिता हैं वही उनके गुरु हैं। बिल्कुल दोस्तों, हमारे माता पिता हमारे गुरु होते हैं। और एक और फ़ोन लाइन आ चुकी है तो हम उनको भी ले लेते हैं एयर पर, देखें यदि वो जुड़ सके तो। हेलो, उनकी फ़ोन लाइन कट चुकी है और हम उनको नहीं ले पाए। तो फिलहाल एक गीत सुनवाते हैं और नॉन स्टॉप पर बात तो होती रहेगी। देखिए जुड़ रहे हैं वो, एक बार और हम चेष्टा करते हैं उनको लेने की ताकि बात हो सके गाना सुनवाने से पहले। हेलो, लक बड़ा ख़राब है मेरा।
2: एंड वाइफ

0: जाने मन।
1: बिल्कुल दोस्तों, यदि आप कार्यक्रम बीच में छोड़कर चले जाएंगे तो दिल तो मेरा दुखने वाला है। आज हम बात कर रहे हैं हमारे शाश्वत तत्व और ज्ञान की उपासना के पर्व गुरु पूर्णिमा की और हमारे गुरु की। जीवन में हम गुरु उसे मानते हैं जिससे हम कुछ सीखते हैं। एक अच्छे गुरु अच्छी शिक्षा सीख के अलावा जो सबसे अनमोल चीज़ देते हैं वह है मित्र भाव। जब आप किसी भी परेशानी में हो और कोई उपाय ना सूझ रहा हो, तब सबसे पहले जो नाम आपके मस्तिष्क में आए असल में वही आपका गुरु है। जी हाँ दोस्तों, जो मुश्किल में समस्या में हमारा समाधान कर दे वही तो गुरु है। बल्कि एक अच्छे मित्र की तरह आपकी समस्या वो सुनते हैं, आपको ढांढस बंधाते हैं। आज के युग में तो किताबी ज्ञान कम हो गया है, गूगल बाबा आपको सारा ज्ञान दे देते हैं, लेकिन किताबी ज्ञान हमें आंतरिक शांति देता है। दोस्तों, मन की संतुष्टि तभी मिलती है जब सत चित आनंद देने वाले गुरु हमारे हृदय पर अपने प्रेम का औषधि का लेपन कर देते हैं। बात हम कर रहे हैं गुरु की, सुनते हैं एक और गीत। हालांकि वक्त धीरे धीरे फिसल रहा है और फिसलते फिसलते बस 10 बजने को है। अभी तो 10:49:30 हुए हैं, तो अभी 10 मिनट का समय हमारे पास है। यदि हमारे पास फ़ोन कॉल आ रही है लेकिन किसी कारण से हमारे दोस्तों की कॉल कट जा रही है, आप हमसे बात करते रहिए। 2213-1341 अंतिम कॉल मैं लूँगी, लेकिन पहले गीत।

0: जी हाँ, इश्क ज़्यादे के इस ट्रैक के बाद हमारे साथ जुड़ चुके हैं एक और दोस्त, झटपट उनसे बात कर लेते हैं। हेलो।
1: हाँ, गुड मॉर्निंग, मेरा नाम है शुभजीत, मैं बल्गेरिया से बात कर रहा हूँ।
0: शुभजीत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में, बताइए कैसे हैं आप?
1: मैं अच्छा हूँ, आप कैसे हैं?
0: मैं भी अच्छी हूँ, आप क्या करते हैं?
1: मैं जॉब करता हूँ।
0: जॉब करते हैं और रहते कहाँ हैं?
1: बेलघरिया
0: में। बस बहुत अच्छा लगा आप हमारे साथ जुड़े, तो बताइए क्या कहना चाहते हैं?
1: आज तो गुरु के बारे में बात हो रही है
0: जी, क्योंकि आज गुरु पूर्णिमा है
1: जी, तो मेरे लिए तो मेरे मम्मी पापा ही है। पापा तो अभी नए हैं
0: जी,
1: बचपन से जो कुछ भी सीखा हूँ आज तक जैसा भी हूँ, क्योंकि इंसान का तो सिर्फ एजुकेशन ही उसका, एक बच्चे का, एक इंसान का डेवलपमेंट नहीं है, उसके साथ साथ बाकी जो चीजें होती है
0: बिल्कुल
1: बहुत जरूरी है। अच्छा इंसान बनना, लोगों की मदद करना, लोगों के बारे में सोचना, और मन जो करे, जैसे कि मेरे फैमिली में, जैसे मेरे फैमिली काफी ओपन माइंडेड है, तो मुझे हमेशा सिखाया गया है कि कोई भी चीज थोपना नहीं है, और जो मन का इच्छा हो उसको रेस्पेक्ट करे। और मैं ब्लेस्ड हूँ कि मेरे मम्मी पापा ऐसे थे कि मतलब मेरे पापा तो अभी नहीं रहे, मम्मी है, तो ऐसा है कि अभी तक मुझे कुछ छुपाने की जरूरत नहीं पड़ता है। मुझे जो करना है, मेरी जो इच्छा है, मैं बोल सकता हूँ। मेरे अंदर में ऐसा कोई हिचकिचावट कभी नहीं होता है कि नहीं मैं नहीं ये छुपा लेता हूँ, ये नहीं बताता हूँ, तो ये सब मैं सीखा हूँ। तो ये जो फीलिंग्स है, ये स्कूल के टीचर सब लोग तो बहुत एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं बच्चे का, लेकिन जो चैरिटी बिगिंस एट होम बोलते हैं, ये सबसे जरूरी चीज है कि ये जो अपब्रिंगिंग प्रोसेस है ये घर से शुरू होता है। तो घर का माहौल, घर का जो एटीट्यूड है, फैमिली मेंबर्स को एटीट्यूड है, ये बच्चे के डेवलपमेंट के लिए बहुत जरूरी है।
0: बिल्कुल,
1: तो ये काफी इन्फ्लुएंस करता है बच्चे को।
0: बिल्कुल, आपने बहुत अच्छी बात कही शुभजीत जी, तो आप जुड़े हमारे साथ कार्यक्रम में, मुझे बड़ा अच्छा लगा।
1: बहुत बहुत शुक्रिया, मेरा बहुत
0: शुक्रिया। तो शुभजीत ने बेसिकली बात कही कि आपकी जो अपब्रिंगिंग है, जो आपके एनवायरनमेंट होता है, वो बहुत बड़ा रोल निभाता है आपको बड़ा करने में। तो जो संस्कार हमको घर से मिलते हैं वो हमारे माँ बाप ही होते हैं पहले गुरु। और आप जो शुभजीत कह रहे हैं आपके पिता साथ नहीं है, आप बिल्कुल मत जानिए कि आपके पिता हमेशा आपके साथ हैं, और वो हमेशा ताउम्र आपको गाइड करते रहेंगे, मार्गदर्शन देते रहेंगे, और आपकी माता जी तो आपके साथ हैं ही। और आप संस्कारों की बात कर रहे हैं, सच में आज हमारे देश में जो एक सभ्य समाज है, जो विश्व में सभ्य समाज है, वो संस्कारों की वजह से है। तो गुरु हमारे कोई एक खाली टीचर ही गुरु है, या फिर जीवन में ऐसे बहुत से लोग आ सकते हैं जो आपकी लाइफ को बदल सकते हैं, आपको क्रिएट कर सकते हैं, वो आपके क्रिएटर हैं, एक निर्माता हैं। तो हम अपने उन सभी गुरुओं को, बात तो मेरी करने की और भी बहुत सारी इच्छा थी, हमें अपनी तमाम गुरु समान जो विभूतियाँ हैं उनको स्मरण करना चाहते थे, उनके प्रति कृतज्ञता जताना चाहते थे, लेकिन वक्त हमें इजाज़त नहीं दे रहा। और मेरे पास बहुत सुंदर सुंदर गीत मैं लेकर के आई थी, कुछ ट्रैक्स में रह गए जो अगली प्रोग्राम यानी 4 तारीख को मैं फिर आने वाली हूँ, तो 4 तारीख को मैं वो गीत बजाने वाली हूँ जो आज मैं नहीं बजा पाई। लेकिन चलते चलते सब गुरुओं को प्रणाम करती हूँ, आपके सब गुरुओं को भी मैं प्रणाम करती हूँ, और मेरे जीवन में जिन्होंने मुझे बनाया है मैं उनको भी प्रणाम करती हूँ, और अपने माता पिता को भी प्रणाम करती हूँ। इसके साथ ही आपकी दोस्त सविता आपसे चाहती है इजाज़त, मुलाकात ऑफकोर्स 4 तारीख होने वाली है, और 11:10 पर कार्यक्रम लो आ गई उनकी याद, FM गोल्ड पर सुनना एकदम ना भूलें। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश

आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।

0: गाने जो लगाए एंटरटेनमेंट का तड़का, आप सुन रहे हैं टीम का तड़का, टीम का तड़का, टीम का तड़का, 107 FM रेनबो पर, टीम का तड़का, टीम का तड़का, टीम का तड़का, 107 FM रेनबो पर, रेनबो पर।
1: नमस्कार दोस्तों, अगर आपको भी लग रही है दोपहर वाली नींद या काम करते करते दिमाग हो गया है जाम, तो चिंता मत कीजिए, रिफ्रेशमेंट का टाइम हो गया है। जी हाँ, बज चुके हैं दिन के 3 और शुरू हो चुका है आपका फेवरेट शो यानी कि कार्यक्रम 3 का तड़का, सिर्फ और सिर्फ 107 FM रेनबो पर। और मैं हूं आज आपके साथ आपकी अपनी होस्ट एंड दोस्त ज्योति, लेकर इस कार्यक्रम को। तो दोस्तों, ना कोई बोरियत, ना कोई टेंशन, यहां मिलेगा सिर्फ एंटरटेनमेंट का असली मसाला। तो चाय कॉफी का कप संभालिए और हो जाइए हमारे साथ ट्यून इन। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का ये सफर इस मधुर तराने से।

क्या बात है, उदित नारायण की आवाज और साथ ही लता जी की सुरीली तान और ये धड़कने बयां करती हुई धुन, सच में दिल तो पागल है दिल।

दीवाना है। तो दोस्तों, और वैसे भी दोपहर के 3 बज रहे हैं, तो दोस्तों और इस वक्त दिल की बात ना सुनो तो भला कब सुनो। जी हाँ, दोपहर की इस मीठी धूप और सुस्ती के बीच जब ये दिल थोड़ा सा पागलपन करने लगे, तो समझ जाइए कि 3 का तड़का एकदम सही रंग जमा रहा है। वैसे दिल जब पागल होता है तभी तो कोई ना कोई खास दास्तां बनती है, एक ऐसी कहानी जिसमें थोड़ा प्यार हो, थोड़ा जादू हो और ढेर सारा एहसास हो। तो चलिए इस पागल दिल की राहों पर थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और सुनते हैं एक ऐसे ही खूबसूरत मोहब्बत की दास्तां, अरिजीत सिंह और पलक मुच्छल की आवाज में सजा ये नगमा, फिल्म गब्बर इज बैक से।

0: 107 FM Rainbow Presents परियोजना प्रस्तुति सरकारी उद्यम तरक्की समाज की परियोजना प्रस्तुति।
1: तो दोस्तों, आज मैं आप सभी को भारत सरकार की एक अत्यंत महत्वपूर्ण और जन कल्याणकारी योजना के बारे में बताने जा रही हूं, जिसका नाम है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। साथियों, जीवन अनमोल है, लेकिन जीवन अनिश्चित भी है। किसी भी परिवार के लिए सबसे बड़ा सहारा होता है घर का कमाने वाला व्यक्ति। अगर किसी कारणवश उसकी असमय मृत्यु हो जाए तो परिवार पर आर्थिक संकट आ जाता है। ऐसे ही संकट के समय परिवार को सुरक्षा देने के उद्देश्य से भारत सरकार ने प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना की शुरुआत की। इस योजना की शुरुआत 9 मई 2015 को देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा की गई थी। यह योजना खास तौर पर आम नागरिकों को कम प्रीमियम में जीवन बीमा सुरक्षा प्रदान करने के लिए बनाई गई है। और इस योजना की मुख्य विशेषताएं यह है कि प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के अंतर्गत बीमित व्यक्ति की किसी भी कारण से मृत्यु होने पर उसके परिवार या नामांकित व्यक्ति को 2 लाख रुपए की बीमा राशि दी जाती है। यह बीमा सुरक्षा पूरे 1 वर्ष के लिए होती है और हर साल स्वतः नवीनीकरण किया जा सकता है। इस योजना की सबसे बड़ी खासियत है इसका कम प्रीमियम। इसमें केवल 330 रुपए प्रति वर्ष का प्रीमियम देना होता है, जो सीधे बैंक खाते से स्वतः कट जाता है। यानी साल भर की सुरक्षा, वह भी बहुत कम खर्च में। इस योजना का लाभ वे सभी लोग उठा सकते हैं जिनकी उम्र 18 वर्ष से 50 वर्ष के बीच हो और जिनका बैंक खाता हो। बैंक खाता होना आवश्यक है, क्योंकि बीमा राशि और प्रीमियम दोनों बैंक के माध्यम से ही संचालित होते हैं। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना को किसी भी सरकारी या निजी बैंक या फिर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक या जनधन खाते के माध्यम से लिया जा सकता है। आवेदन प्रक्रिया बहुत ही सरल है। बैंक जाकर या बैंक की ऑनलाइन सुविधा के माध्यम से इस योजना से जुड़ा जा सकता है। तो साथियों, इस योजना का उद्देश्य केवल बीमा देना नहीं है, बल्कि देश के हर नागरिक को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना है, ताकि किसी परिवार को अचानक आई विपत्ति के कारण आर्थिक रूप से टूटना ना पड़े। आज के समय में जब जीवन में अनिश्चितता बढ़ती जा रही है, ऐसे में प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना एक मजबूत सुरक्षा कवच बनकर सामने आती है। यह योजना गरीब, मध्यम वर्ग और आम जनता के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। अंत में मैं यही कहना चाहूंगी, अगर आपने अभी तक प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना का लाभ नहीं लिया तो अवश्य इस योजना से जुड़े और अपने परिवार के भविष्य को सुरक्षित करें।
0: परियोजना प्रस्तुति सरकारी उद्यम तरक्की समाज की परियोजना प्रस्तुति।
2: गाने जो लगाए एंटरटेनमेंट का तड़का, आप सुन रहे हैं टीम का तड़का 107 FM रेनबो पर। टीम का तड़का 107 FM रेनबो पर।

तो दोस्तों आप ये गीत सुन रहे थे केके की आवाज में फिल्म जन्नत से। तो दोस्तों तड़के का वक्त अब यही खत्म होता है। तो दोस्तों ये सफर सच में बेहद खास रहा। तो दोस्तों आज के शो के 3 के तड़के से मैं आपकी दोस्त होस्ट एंड दोस्त ज्योति आप सभी से लेती हूँ विदा। लेकिन मैं ठीक आप सभी से मिलने आऊंगी 5:15 पर, यहाँ नहीं 100.1 FM गोल्ड पर। जी हाँ, कार्यक्रम चाय एंड क्लासिक्स लेकर। और आप थोड़ी देर में भी आप सुनेंगे हमारा स्पॉन्सर कार्यक्रम NCERT की ओर से। तो दोस्तों तब तक के लिए अपनी दोस्त ज्योति को दीजिए इजाजत, और जाते जाते आप सभी के लिए एक मधुर तराना छोड़े जाती हूँ। तो दोस्तों यूं ही सुनते रहिए, साथ रहिए 107 FM रेनबो पर, और हाँ हंसते रहिए और साथ ही गीतों को यूं ही गुनगुनाते रहिए।

0: उमंग सीआईईटी प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: नमस्कार श्रोताओं, मैं हूँ विमलेश।
0: और मैं हूँ अजीत। तो आइए करते हैं शुरुआत हमेशा की तरह एक खूबसूरत विचार से, जिसे भेजा है पलारी छत्तीसगढ़ से नितेश कुमार देवांगन, दुर्गा प्रसाद देवांगन, पराग टेलर, पूना राम देवांगन और कृष्ण देवांगन जी ने। लिखते हैं,
2: तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत तुम्हारा धैर्य है, क्योंकि शांत रहने वाला इंसान हर तूफान पार कर जाता है।
0: बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको इस सुंदर विचार के लिए। आइए सुनते हैं पिछले दिनों हमें संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। तो पहला संदेश हमें मिला है खुर्जा उत्तर प्रदेश से तिलक राज अरोड़ा, प्रकाश अरोड़ा, चंदन अरोड़ा और अंकुश अरोड़ा जी का। लिखते हैं,
2: सर अजीत जी, मैडम विमलेश जी, सप्रेम नमस्ते जी।
0: नमस्ते।
2: उमंग कार्यक्रम सुनकर दिल खुशी से झूम जाता है। ये कार्यक्रम नंबर वन कार्यक्रम है। ऑस्ट्रेलिया के आदिवासी ये कार्यक्रम उमंग कार्यक्रम में सुना और बहुत पसंद आया। ये कार्यक्रम बेहतरीन अंदाज के साथ सुनवाया गया, जो कि हमें बहुत अच्छा लगा।
0: बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस संदेश के लिए। अगला हमें मिला है संदेश छत्तीसगढ़ नगर पंचायत पलारी से प्रकाश वर्मा, प्रिंस वर्मा, निखिल वर्मा और यशस्वी वर्मा जी का। इसके साथ साथ
2: मोहम्मद सईद अब्बासी, निगहत परवीन, शाहनवाज सरफराज, फरदीन, सुहान अरजान और अबान अब्बासी।
0: आपने भेजा है हमें संदेश ऊपरकोट बुलंदशहर उत्तर प्रदेश से। अगला संदेश हमें मिला है संबलपुर कांकेर से फागुराम यादव, ज्योति यादव और ओजस्वी यादव का।
2: हिंगोली महाराष्ट्र से शाहजी बोड़खे, श्रीमती नंदा बोड़खे और हनुमान बोड़खे।
0: बहुत बहुत धन्यवाद श्रोताओं आप सबका संदेश भेजने के लिए। निवेदन है इसी प्रकार से संदेश भेजते रहें और हमारी प्रश्नोत्तरी में भी भाग लेते रहें। एक बार फिर से स्वागत है आप सबका हमारी लघु प्रेरक कथाओं की श्रृंखला में।
2: आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक और प्रेरक प्रसंग। मित्रों, हम सब महान आविष्कारक थॉमस अल्वा एडिसन के नाम से परिचित हैं।
0: जी श्रोता, वे मुख्य रूप से बिजली के बल्ब और प्रारंभिक चलचित्र कैमरे के आविष्कार के लिए जाने जाते हैं।
2: जी,
0: लेकिन सच तो ये है कि उन्होंने 1000 से भी अधिक पेटेंट लिए, जो अपने समय में एक असाधारण उपलब्धि थी।
2: जब एडिसन बिजली के बल्ब का आविष्कार कर रहे थे, तब उन्होंने उपयुक्त फिलामेंट खोजने के लिए हजारों प्रयोग किए। अधिकांश प्रयोग असफल रहे। कहते हैं कि वे लगभग 10,000 बार असफल हुए।
0: एक बार की बात है श्रोताओं, बिजली के बल्ब के आविष्कार के बाद एक पत्रकार ने जब उनसे पूछा कि आप हजारों बार असफल हो चुके हैं, क्या आपको कभी निराशा नहीं हुई?
2: एडिसन ने मुस्कुराकर उत्तर दिया,
0: मैं असफल नहीं हुआ हूँ, बल्कि मैंने केवल 10,000 ऐसे तरीकों को ढूंढने में सफलता पाई है जो काम नहीं करते।
2: इस कथन का मूल अंग्रेजी वाक्य है, आई हैव नॉट फेल्ड, आई हैव जस्ट फाउंड 10,000 वेज दैट वोंट वर्क।
0: श्रोताओं, असफलताओं को देखने का यह दृष्टिकोण सचमुच कितना सकारात्मक और श्लाघनीय है। इस सकारात्मक सोच ने उन्हें लगातार प्रयास करते रहने की प्रेरणा दी
2: और अंततः उन्होंने ऐसा फिलामेंट खोज लिया जिससे व्यवहारिक विद्युत बल्ब का निर्माण संभव हो सका।
0: तो श्रोताओं, इस प्रसंग से क्या प्रेरणा मिलती है? यही ना कि सफलता अंत नहीं बल्कि सीखने के अवसर का प्रारंभ है।
2: हर असफल प्रयास हमें सफलता के एक कदम और निकट ले जाता है, यदि हम में निरंतरता बनी रहे और
0: धैर्य, निरंतर प्रयास और सकारात्मक सोच से बड़ी सफलता भी प्राप्त की जा सकती है। तो श्रोता मित्रों, जरूर बताइएगा कि आपको हमारा आज का प्रेरक प्रसंग कैसा लगा। हमें आपके संदेशों का इंतजार रहेगा।
2: श्रोताओं, आज आपने इस प्रसंग में हिंदी का एक शब्द सुना, शब्द था श्लाघनीय। आइए अब इसका अर्थ जान लेते हैं।
0: श्रोताओं, श्लाघनीय का अर्थ होता है प्रशंसा के योग्य या प्रशंसनीय। ये श्लाघा शब्द से आया है। श्लाघा का अर्थ है प्रशंसा।
2: और अब आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से।
0: तो आज का प्रश्न है श्रोताओं, थॉमस एडिसन अपने प्रयोगों में लगभग कितनी बार असफल हुए थे और श्लाघनीय शब्द का क्या अर्थ है?
2: जी, प्रश्न एक बार फिर से सुन लेते हैं। थॉमस एडिसन अपने प्रयोगों में लगभग कितनी बार असफल हुए थे और श्लाघनीय शब्द का क्या अर्थ है?
0: भेज दीजिए अपना उत्तर हमारे IVRS नंबर यानी 8800-4405559 पर। आप हमारे ईमेल पर यानी audio@cit.nic.in पर भी अपने संदेश भेज सकते हैं।
2: इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप CIT NCERT को फॉलो कर सकते हैं। इसके द्वारा आपको हमारी शैक्षणिक

0: गतिविधियों की निरंतर जानकारी मिलती रहेगी। और हाँ, यदि आप एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तकों का ध्वनि रूपांतरण यानी ऑडियो बुक सुनना चाहते हैं तो
1: YouTube में जाकर टाइप कीजिए एनसीईआरटी YouTube ऑफिशियल चैनल। आपको वहाँ सर्च के अनेक विकल्प मिलेंगे, उन्हें फॉलो कीजिए और अपनी मनचाही पाठ्य पुस्तकों को सुनिए।
0: एक और जरूरी सूचना आपको दे दें, यदि आप एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तकों के पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो सीधे किसी भी सर्च इंजन में जाकर टाइप कीजिए एनसीईआरटी बुक्स पीडीएफ। सर्च के विकल्प पर जाकर आप यहां अपनी मनचाही पूरी पुस्तक डाउनलोड कर सकते हैं।
1: तो श्रोताओं, बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की। तो हमारा पहला कार्यक्रम है मातृभूमि।
0: कक्षा 6 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक की इस कविता के रचयिता सोहन लाल द्विवेदी हैं। कार्यक्रम में कविता को संगीत के रूप में प्रस्तुत किया गया है जो मातृभूमि के प्रति कवि के गहरे प्रेम को प्रकट करता है। कविता में भारत भूमि के सौंदर्य और विविधता का वर्णन किया

0: नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के अंतर्गत सभी के लिए शिक्षा को बढ़ावा देते हुए NCERT असाक्षर लोगों को साक्षर बनाने के क्रम में कार्य कर रहा है। और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम टेलीविजन की कहानी।
1: इस कार्यक्रम में टेलीविजन के आविष्कार की कहानी को एक रोचक नाटक द्वारा प्रस्तुत किया गया है, तथा ये भी बताया गया है कि आविष्कार की प्रक्रिया में वैज्ञानिकों को किन किन तकनीकी समस्याओं को समझना और उन्हें हल करना पड़ा।
2: डायना, डायना, आज तो फुटबॉल मैच देखने पर मजा ही आ गया। वाह, क्या शानदार मैच था। मैनचेस्टर की टीम ने तो कमाल ही कर दिखाया।
3: जॉन, मुझे भी बहुत इच्छा थी मैच देखने की। कितने दिनों से तैयारी कर रही थी, मगर इस बुखार को भी इसी समय आना था। काश मैं भी देख पाती।
2: मैंने उस मैच की कुछ तस्वीरें खींची हैं। जब साफ होंगी तो मैं तुम्हें दिखा दूंगा।
3: मुझे पता था कि तुम तस्वीरें जरूर लोगे। फोटोग्राफी का शौक जो है तुम्हें।
2: मेरे मन में एक बात आ रही है।
3: वो क्या?
2: वो ये है कि जिस तरह हम रेडियो पर कुछ आवाजें सुन सकते हैं, उसी प्रकार क्या हम दूर के किसी दृश्य को किसी उपकरण के सहारे देख नहीं सकते?
3: वाह, क्या बात कही है। लेकिन क्या ऐसा हो सकता है?
2: हाँ, मुश्किल तो है लेकिन शायद असंभव नहीं।

दोस्तों, ये बालक था जॉन लोगी बेयर, जिसे टेलीविजन के जन्मदाता के रूप में हम जानते हैं। यूं तो टेलीविजन के विकास में अनेक लोगों का योगदान है, लेकिन जॉन लोगी बेयर ने पहली बार चलते फिरते दृश्यों के प्रसारण में सफलता पाई। जॉन का जन्म 14 अगस्त 1888 को स्कॉटलैंड के हेलेन्सबर्ग में हुआ था। उसे फोटोग्राफी का बहुत शौक था। उन दिनों विद्यालय में फोटोग्राफी पर विशेष बल दिया जाता था। एक दिन की बात है, जब जॉन लगभग 11 साल के थे,

0: शांत हो जाओ बच्चों, शांत। बच्चों, इस साल की फोटोग्राफी प्रतियोगिता में सर्वश्रेष्ठ फोटोग्राफी का पुरस्कार दिया जाता है जॉन लोगी बेयर्ड को।
1: ये मुझे तो पता था।
0: जॉन मंच पर आकर पुरस्कार ग्रहण करें। और एक बात और, आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि जॉन की फोटोग्राफी इतनी उम्दा है कि उसे इस स्कूल के फोटोग्राफी डिपार्टमेंट का अध्यक्ष भी बनाया जाता है।

जॉन का बचपन एक माली के लड़के के साथ बीता जो उसके घर के बागीचे में काम किया करता था। वो अक्सर उसके साथ फोटोग्राफी करता। जॉन पढ़ने में बहुत तेज था। विद्यालय की पढ़ाई पूरी करने के बाद जॉन बेयर्ड ने ग्लासगो में रॉयल टेक्निकल कॉलेज में विज्ञान का अध्ययन आरंभ किया। 5 वर्ष की पढ़ाई के बाद वो सहायक इंजीनियर बन गए। एक बार वो अपने मित्र से मिलने त्रिनिदाद गए। यात्रा के दौरान जहाज के रेडियो ऑपरेटर से उनकी दोस्ती हो गई।

फिर तो दोनों ने विद्युत द्वारा हवा में तस्वीरें भेजने की समस्या पर गंभीरता से विचार किया। चौंतीस वर्ष की अवस्था में सन 1922 में वो इंग्लैंड लौट आए।

0: 1923 में वो लिंटन क्रेसेंट चले गए और एक जगह किराए पर ले ली और यही जगह उनकी प्रयोगशाला बनी। उनके सहायक थे विलियम।
1: विलियम, इतने दिनों से हम प्रयोग कर रहे हैं लेकिन लगता है कि अभी मंजिल दूर है।
2: हाँ जॉन, जॉन क्यों ना हम अपने प्रयोग को एक बार फिर नए सिरे से करें।
1: हाँ ठीक कहा तुमने। अच्छा सुनो, देखो मैं कुछ चीजें लेकर आया हूँ।
2: क्या?
1: ये है चाय रखने का पुराना डिब्बा।
2: हाँ?
1: और ये है टोपी रखने वाला गत्ते का डिब्बा।
2: जॉन मैं भी कबाड़ी की दुकान से एक बिजली की मोटर लेकर आया हूँ जैसा तुमने कहा था।
1: अच्छा
2: ये देखो।
1: हेलो, अरे वाह ये तो बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया है। हाँ ठीक है, ये तो कट गया। अब हम इस गोल गत्ते में ढेर सारे छोटे छोटे छेद बनाते हैं।
2: छोटे छोटे छेद? हाँ। उनसे क्या होगा?
1: मैं बनाता हूँ। इससे ये होगा विलियम कि इस गोल गत्ते को हम बिजली की मोटर में लगाकर घुमाएंगे।
2: अच्छा।
1: और इसके पीछे रहेगा ये प्रोजेक्शन लैंप।
2: वाह।
1: हाँ, और बीच में तस्वीरों के नेगेटिव रखेंगे। फिर देखते हैं क्या होता है।
2: चलो करके देखते हैं।
1: इसको इसमें छेद तो कर दिए। हाँ। अब इसमें तस्वीरों के नेगेटिव लगाए।
2: ये प्रोजेक्शन लैंप में यहाँ रख देता हूँ।
1: हाँ। ठीक है, अब इसको घुमा के देखते हैं। बात तो बनती नजर आ रही है।
2: देखो सामने दीवार पर देखो। जॉन लगता है हम सही दिशा में काम कर रहे हैं।
1: और घुमाओ, और घुमाओ। हाँ शाबाश शाबाश, ऐसे ही। लगता है हमें कामयाबी भी मिल रही है। हम जरूर सफल होंगे विलियम, जरूर सफल होंगे।
2: हमारी मेहनत रंग लाएगी।

दोस्तों, उन्होंने पाया कि चकत्ती घुमाकर प्रकाशित किए जाने वाले संपूर्ण दृश्य छिद्रों के माध्यम से तीव्र एवं मंद बिंदुओं में खंडित हो जाते थे। उत्साहित होकर उन्होंने सेलेनियम सेल और नियॉन लैंप रेडियो वॉल्व आदि उपकरणों के माध्यम से अपना काम शुरू किया। इस प्रयोग में उन्हें काफी समय लगा। कठोर परिश्रम से उनका पहला टेलीविजन ट्रांसमीटर और रिसीवर बन पाया। आखिरकार वो सन 1924 ईस्वी के वसंत में एक तस्वीर को 3 गज की दूरी तक भेजने में कामयाब हुए। लेकिन समस्या ये थी कि तस्वीर साफ नहीं थी और उसको पहचानना भी मुश्किल था। सन 1925 2 अक्टूबर उन्होंने अपने उपकरण में प्रकाश को विद्युत किरणों में परिवर्तित करने के लिए एक नई चीज लगाई।

0: Ist Gott noch dabei. Ha, hier hat er die Decke. Ab die Danke gehaut. William?
1: Ha, John?
0: Projection lamp on karo?
1: Karta hun.
0: Ha. Aur suno?
1: Ha.
0: Aap kamre mein andhera karo.
1: Ek minute.
0: Ha.
1: Main ye light band kar deta hun.
0: Ha. Theek hai. Aur suno? Screen on karo.
1: Ha, theek hai. अरे वाह जॉन, देखो सामने।
0: अरे हाँ,
2: क्या बात है।
0: ये तो कमाल हो गया। मैंने कहा था ना कि हमें कामयाबी जरूर मिलेगी।
2: हाँ जॉन, हमें कामयाबी मिल गई। कितनी मेहनत की थी हमने।
0: हाँ
2: जॉन, बहुत बहुत बधाई हो।
0: तुम्हें भी विलियम, बहुत बहुत बधाई।

0: स्विच दबाने पर वो आश्चर्यचकित रह गए। उनके उपकरण में दृश्य का पूरा चेहरा उभर आया था। उसे देखकर वो कुर्सी से उछल पड़े। इस प्रकार मानव आकृति के प्रसारण में ये सफलता उनकी पहली सफलता थी।
1: साथियों, रॉयल इंस्टीट्यूट लंदन के इस विशेष समारोह में आपका स्वागत है। आज हमारे बीच एक विशिष्ट व्यक्ति उपस्थित है। इन्होंने एक खास उपकरण का आविष्कार किया है जो चलते फिरते दृश्यों का प्रसारण कर सकता है, ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार रेडियो आवाज को प्रसारित करता है। वो विशेष व्यक्ति है जॉन लोगी बेयर। आज ये अपने उपकरण का प्रदर्शन करेंगे। आइए मिस्टर जॉन लोगी बेयर।
2: जी साथियों, मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है कि अब दृश्यों का प्रसारण संभव है। इस उपकरण के द्वारा आप दूर के दृश्यों को अपने घर में भी देख सकते हैं।
3: श्रीमान, मुझे तो ये बात असंभव लगती है।
2: संभव है श्रीमान, ये संभव है। आप इस कैमरे के सामने आएंगे?
3: हाँ आइए। यहाँ?
2: हाँ आइए। इस तरफ।
3: इधर?
2: हाँ, अब आप इस कैमरे के सामने चलिए। हाँ, इधर? हाँ, थोड़ा सा
3: इधर?
2: हाँ, अब ठीक है। हाँ, साथियों, मेरा आपसे निवेदन है कि कृपया सामने स्क्रीन पर देखिए।
1: ओह, ये तो कमाल हो गया। आंखों को विश्वास नहीं होता। वेरी गुड। कांग्रेचुलेशन मिस्टर जॉन, इट्स एन अनबिलीवेबल मिरेकल।
4: वाओ,
2: शुक्रिया।

0: सन 1928 ईस्वी में ही उन्होंने रंगीन टेलीविजन के प्रसारण पर भी कार्य करना शुरू कर दिया था। सन 1936 ईस्वी में बीबीसी ने अपनी टेलीविजन सेवा उनके विकसित उपकरण से शुरू कर दी। 14 जून सन 1946 में इस महान आविष्कारक का निधन हो गया। जब भी हम टेलीविजन देखते हैं, जॉन बेयर अक्सर याद आते हैं। विश्व उनके इस महान योगदान के लिए सदा उनका आभारी रहेगा।
1: तो श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम टेलीविजन की कहानी। आशा है कि यह कार्यक्रम आपने जरूर पसंद किया होगा।

0: तो अब हमारा आज का कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है, इसलिए अपने मित्र अजीत और उमंग की तकनीकी टीम के साथ यानी कुसुमलता,
1: जगबंधु,
0: चेतना,
1: अर्शद,
0: सौम्या
1: और फैजान के साथ विमलेश को आज्ञा दीजिए।
0: नमस्कार।
2: उमंग, उमंग, उमंग, उमंग, उमंग।

0: ये तो चल नहीं रहा है।
1: ये क्या हुआ?
2: What happened?
3: पावर चला गया होगा।
0: अब क्या करेंगे? Exactly at 10 a.m. आज मेरा ब्रेकअप हो गया, इसलिए जिसके साथ आना था वो आया ही नहीं। बचा मेरा ब्रोकन हार्ट और ये ब्रोकन फोन, जो किसका है पता नहीं, पर इसका वॉइस नोट, वाओ, मेरे शो में मेरा साथी बन गया। पर अब शायद इस वॉइस नोट ने भी मेरे साथ ब्रेकअप कर लिया। I'm sorry. Excuse me.

0: पुराने दिनों का सफर, पुराने गीतों का सिलसिला, आप सुन रहे हैं छायालोक, छायालोक 107 FM रेनबो पर। पुराने दिनों का सफर, पुराने गीतों का सिलसिला, छायालोक, छायालोक।
1: हम साथ साथ। गुड इवनिंग, नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने पसंदीदा शो में, यानी कि छायालोक के सेगमेंट हम साथ साथ में, और मैं हूं आपकी अपनी होस्ट एंड दोस्त ज्योति। तो दोस्तों, जब दो रास्ते मिलते हैं और एक मकसद बन जाते हैं तो इतिहास रचा जाता है। संगीत की दुनिया में भी जब दो नाम एक साथ जुड़े, नदीम और श्रवण, तो 90 के दशक की पूरी संगीत यात्रा ही बदल गई। जब भी किसी को प्यार हुआ, किसी का दिल टूटा या किसी ने दोस्ती का हाथ बढ़ाया, तो बैकग्राउंड में नदीम श्रवण की ही धुन गूंजी। तो दोस्तों, आज की इस एक घंटे के स्पेशल प्रोग्राम यानी कि हम साथ साथ में, हम बात करेंगे नदीम अख्तर शफी और श्रवण राठौर की उस अटूट जोड़ी की, जिन्होंने साथ मिलकर हमें बॉलीवुड के सबसे खूबसूरत नगमे दिए। तो चलिए दोस्तों, सफर की शुरुआत करते हैं, जी हाँ, एक ऐतिहासिक फिल्म से जिसने इस जोड़ी को सफलता की ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया। तो सुनिए दोस्तों, फिल्म आशिकी का यह सदाबहार गीत।

इस गाने की मिठास आज भी वैसी की वैसी ही है। तो दोस्तों आप सुन रहे हैं, जी हाँ, कार्यक्रम हम साथ साथ हैं छायालोक के सेगमेंट में, सिर्फ और सिर्फ 107 FM रेनबो पर अपनी दोस्त ज्योति के साथ। तो दोस्तों नदीम और श्रवण की ये जोड़ी बेहद खास थी। दोनों का मिजाज एक दूसरे से काफी अलग था। नदीम साहब जहाँ नए नए आइडियाज और दिल को छू लेने वाली धुनें बनाने में माहिर थे, वहीं श्रवण जी को भारतीय शास्त्रीय संगीत, तबला और ऑर्केस्ट्रेशन की गहरी समझ थी। और जब ये दोनों साथ आए तो मानो मेलोडी को एक नया समंदर निकल पड़ा। आशिकी के बाद पूरा देश इस जोड़ी का दीवाना हो चुका था। हर फिल्म निर्माता इनकी धुनें अपनी फिल्म में चाहता था। और इसी दौर में आई फिल्म साजन, जिसने साबित कर दिया कि नदीम श्रवण का जादू कोई इत्तेफाक नहीं था। तो दोस्तों आइए सुनते हैं फिल्म साजन से ये बेहद ही खूबसूरत गीत।

को भी जानते हैं दोस्तों, वो है सादगी। क्योंकि 90 के दशक में जहां दुनिया भर में पश्चिमी संगीत का शोर बढ़ रहा था, वहीं नदीम और श्रवण ने शुद्ध भारतीय साजों का सहारा लिया, बांसुरी, ढोलक, तबला और वायलिन। उनके संगीत में एक ऐसी मिट्टी की खुशबू थी जो सीधे हर सुनने वालों के दिल में उतर जाती थी। उसके बाद आई दोस्तों उनकी फिल्म सन 1991 में, फिल्म दिल है कि मानता नहीं। इस फिल्म का जो शीर्षक गीत है यानी कि टाइटल ट्रैक, आज भी हर प्रेमी जोड़े का पसंदीदा गीत है। जब कुमार सानू और अनुराधा पौडवाल की आवाज नदीम श्रवण की धुन पर सजी तो हर कोई बस सुनता ही रह गया। तो चलिए दोस्तों, उसी सादगी से भरे दौर में लौटते हैं और सुनते हैं यह सुरीला नगमा।

0: पे
1: क्या
0: मैं क्यों बेचैन रहता हूँ,
1: क्यों
0: मेरी इस बेकरारी की वजह क्या है, बता दूँ क्या
1: क्या

दोस्तों, ये सब सारी जो गीते हैं नदीम श्रवण की बनाई हुई अमर धुनें। तो दोस्तों, नदीम श्रवण सिर्फ खुद ही हिट नहीं हुए बल्कि उन्होंने बॉलीवुड को कई नए सुपरस्टार्स भी दिए। चाहे वो आशिकी फिल्म के राहुल रॉय हो, या फिर फूल और कांटे के अजय देवगन, या फिर दीवाना फिल्म से बॉलीवुड में कदम रखने वाले शाहरुख खान। फिल्म दीवाना का संगीत इतना जादुई था कि इसने शाहरुख खान को रातों रात हर दिल अजीज बना दिया। इस फिल्म के लिए नदीम श्रवण को सर्वश्रेष्ठ संगीतकार का फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला। तो चलिए दोस्तों, उसी जोश और दीवानगी से भरा यह शानदार गीत सुनते हैं।

क्या बात है, दीवानगी का ये आलम आज भी वैसा ही है जैसा सन 1992 में था। तो दोस्तों, नदीम श्रवण की जोड़ी ने न सिर्फ रोमांटिक गाने बनाए बल्कि लोकगीत और सुफियाना अंदाज को भी अपनी धुनों में पिरोया, क्योंकि इसके बाद सन 1996 में आई फिल्म राजा हिंदुस्तानी। इस फिल्म के गानों ने जो इतिहास रचा उसकी मिसाल मिलना मुश्किल है, क्योंकि उस फिल्म के हर गीत उस दौर में हर नुक्कड़, हर शादी, हर गली में बजता था और नदीम श्रवण की धुनों पर पूरा देश झूम उठा था। तो आइए इस सुहाने सफर में शामिल करते हैं राजा हिंदुस्तानी का ये बेहद सुरीला और खूबसूरत गीत।

तो दोस्तों समय बदल रहा था, साल 2000 का दौर आ चुका था। लोगों को लगा कि शायद संगीत का ट्रेंड बदलने से नदीम श्रवण का दौर कम हो जाएगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। फिल्म धड़कन और राज जैसे फिल्मों के साथ नदीम श्रवण ने नई सदी में ऐसा धमाकेदार कमबैक किया कि हर कोई हैरान रह गया। धड़कन फिल्म का संगीत 2000 के दशक का सबसे सफल संगीत माना जाता है और इस फिल्म का हर गाना एक मास्टरपीस था। तो दोस्तों तो चलते हैं फिल्म धड़कन की इस गीत की ओर। और इस वक्त स्टूडियो में समय हो चला है 7:47 और आप सुन रहे हैं छायालोक के सेगमेंट हम साथ साथ। और मैं आज आपके साथ हूँ आपकी अपनी होस्ट एंड दोस्त ज्योति, लेकर इस कार्यक्रम को सिर्फ और सिर्फ 107 FM रेनबो पर।

तो दोस्तों समय का पता ही नहीं चला और हम पहुंच गए हैं अपने आज के शो के हम साथ साथ हैं के अंतिम पड़ाव पर। देखिए दोस्तों, वक्त के साथ भले ही हालात बदले और श्रवण राठौर साहब अप्रैल 2021 में हमें छोड़कर हमेशा के लिए अलविदा कह गए, लेकिन नदीम श्रवण नाम की जो संगीतमय विरासत वे पीछे छोड़ गए हैं वे अमर है। जब तक हवाओं में संगीत रहेगा, जब तक मोहब्बत करने वाले एक दूसरे का हाथ थामेंगे, तब तक नदीम श्रवण की बनाई धुनें हमारे दिलों को छूती रहेगी। यह जोड़ी भले ही शरीर से अलग हो गई हो, लेकिन गानों के जरिए यह हमेशा साथ साथ रहेगी। तो दोस्तों, आज का ये शो, जी हाँ, आज के इस कार्यक्रम से अब मैं आप सभी से इजाज़त लेना चाहूँगी, लेकिन ठीक 8:02 में हमारी अगली अनाउंसर हाजिर हो जाएंगी, देविका गुप्ता, जी हाँ, आपकी फरमाइशों के गीतों के लिए। तो बिल्कुल दोस्तों, आप कहीं मत जाइए, मैं जा रही हूँ, लेकिन साथ छोड़े जा रही हूँ देविका गुप्ता के साथ, बिल्कुल। और दोस्तों, तब तक आप मुस्कुराते रहिए, अपना ख्याल रखिए और अपनों का भी ख्याल रखिए, और साथ ही सुनते रहिए 107 FM रेनबो। तो दोस्तों, इस आखिरी गीत के साथ अपनी दोस्त ज्योति को दीजिए इजाज़त। और हाँ, मैंने जैसा पहले कहा कि मैं जा रही हूँ, पर आप कहीं मत जाइए। तो दोस्तों, आप सभी के लिए अगली मुलाकात तक के लिए, तब तक के लिए गुड नाइट, शब्बा खैर। तो दोस्तों, शुभ रात्रि।

पुराने दिनों का सफर, पुराने गीतों का सिलसिला, आप सुन रहे हैं छायालोक, छायालोक 107 FM रेनबो पर। पुराने दिनों का सफर, पुराने गीतों का सिलसिला, छायालोक, छायालोक।

दोस्तों स्टूडियो की घड़ी में समय हो चला है 8:09 यानी कि आप सभी का स्वागत हो चुका है कार्यक्रम छायालोक के दूसरे भाग में, जिसे लेकर हाजिर हूँ मैं आपकी दोस्त और होस्ट देविका 107 FM रेनबो दिल से दिल तक म्यूजिकल यॉर्स पर आप सभी का स्वागत करते हुए देविका है आपके साथ। और दोस्तों ये सफर चलेगा पूरे 9 बजे तक, और इस सफर के दरमियान आपको सुनाऊंगी कुछ बेहतरीन तराने, कुछ रोमांटिक गीत कार्यक्रम छायालोक में।

पुराने दिनों का सफर, पुराने गीतों का सिलसिला, आप सुन रहे हैं छायालोक। छायालोक 107 FM रेनबो पर। पुराने दिनों का सफर, पुराने गीतों का सिलसिला, छायालोक। छायालोक।

बेहद ही खूबसूरत सा ये तराना और ऑन स्क्रीन नजर आए काजोल के साथ अजय देवगन। बहुत ही खूबसूरत सा ये गीत आप सुन रहे थे फिल्म प्यार तो होना ही था से। और ऐसे ही तरानों के नजराने हैं आप सभी के लिए आज के कार्यक्रम में। वैसे दोस्तों आपको बताएं, जब बात होती है ऐसे तरानों की तो उनमें एक तराना बहुत ही खूबसूरत और साथ ही बहुत ज़्यादा फेमस भी है, और वो फेमस है सलमान खान की वजह से। क्यों फेमस है? क्योंकि ये जो फिल्म थी यानी कि प्यार किया तो डरना क्या, जी हाँ, इस फिल्म में सलमान खान ने ये जो गीत था इसे बहुत ही फेमस कर दिया था, जिसके बिगिनिंग म्यूजिक यानी प्रिल्यूड को सुनकर ही लोग हो गए थे दीवाने। तो फिलहाल आप सभी के लिए पेश है ये गीत कमाल खान की आवाज़ में।

पुराने दिनों का सफर, पुराने गीतों का सिलसिला, आप सुन रहे हैं छायालोक। छायालोक 107 FM रेनबो पर। पुराने दिनों का सफर, पुराने गीतों का सिलसिला, छायालोक। छायालोक

उदित नारायण के साथ अलका याग्निक की आवाज़ में बहुत ही खूबसूरत ये तराना आप सुन रहे थे फिल्म राजा से। और ऐसे ही तराना के नजराने आज के कार्यक्रम के अंतर्गत कार्यक्रम छाया लोग आप सुन रहे हैं 107 FM रेनबो, दिल से दिल तक, म्यूजिकल यार्स पर।

पुराने दिनों का सफर, पुराने गीतों का सिलसिला, आप सुन रहे हैं छायालोक। छायालोक 107 FM रेनबो पर। पुराने दिनों का सफर, पुराने गीतों का सिलसिला, छायालोक। छायालोक

वेल फ्रेंड्स, हम तुम फिल्म से आप सुन रहे थे ये गीत, और ऐसे ही बेहतरीन रोमांटिक गीतों को सुनते सुनते स्टूडियो की घड़ी में समय 8:51।

वेल फ्रेंड्स, इन गीतों को सुनते सुनते ऐसा लगता है कि कुछ और समय ज़रूर मिल जाए हमें, लेकिन फिलहाल समय हो चला है आपसे विदा लेने का। स्टूडियो की घड़ी में समय 8:56 यानी 8:56:56। विवेका लेती है आपसे इजाज़त, फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए गुड नाइट, शब्बा खैर।

107 FM रेनबो ते सुनछेन आपके लिए। एरपर दिल को छू लेने वाली दो ट्रैक बैक टू बैक रोग एवं मासूम छवि थेके के एवं लता मंगेशकर कंठे।

आपके लिए 107 FM रेनबो ते आपके लिए प्रथम घंटार शेष गानटी शोनाबो आशा भोसले एवं मोहम्मद रफिर द्वैत कंठे एन इवनिंग इन प्यारिस छवि थेके। शुनते थाकुन, संगे थाकुन 107 FM रेनबो।